मस्त मजे में जीना रे, अरे जीवन इसका नाम है प्यारे, अरे जीवन इसका नाम है प्यारे, तुझे है आगे चलना रे, जीवन इसका नाम है प्यारे।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।